0: और 1989 को हमने हॉस्टल में शिरा पूजन भी किया था, तो एक राम भक्त कार सेवक के रूप में ये हमें व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पीड़ा देने, परंतु सरकार ने इसमें पूरी तत्परता और प्रामाणिकता के साथ कार्य किया।
1: पहले तो रामनगर परिवार के साथ बना रहा, वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती भी बहुत समय पर चल रहा है, उसमें जनपद जितना आता है सब जनपद में रह, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं
2: जी।
1: ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको ऊर्जा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये जो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं।
2: किसने?
1: जी गोपाल जी।
3: देखिए, मेरा सीधा कहना है कि दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं, क्योंकि जिसका कोई दोष नहीं है वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं, ऐसे जिन्होंने जिनका कोई इससे संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही, यह सबको जांच के लिए ले जा रही है, तो स्वाभाविक लोग तो शक करेंगे ही, लेकिन है, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से काम करने आते थे।
4: कहने की बात है, व्हाट दे हैव डन वी बिलीव दैट दे बिल्ट अयोध्या एंड लॉस्ट, देयर वाज नो 400 पार, नाउ दे आर रॉबिंग राम, दे पुट राम इन द बैलेट बॉक्स एंड रिड्यूस्ड हिज मर्यादा पुरुषोत्तम स्टेटस, नाउ दे आर रॉबिंग हिम ऑल्सो, दिस इज अ बंच ऑफ थीव्स, चोरों का बिरादरी, ऊपर से नीचे तक इनका सेटिंग फिटिंग इन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं, वॉट आर दे टॉकिंग, नाउ दे वॉन्ट एस आई थी इंक्वायरी, अरे बाबा एनी चाइल्ड विल टेल यू हाउ मच थेफ्ट इज हैपनिंग।
5: We'll continue to track all the latest updates for you. For now, we're slipping into a very quick break. Back in a moment.

0: करके पुलिस अब आगे बढ़ रही है। लोनावाला पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस जो है वो सिया गोयल को लीला कुंज में लेकर आए थे। पुलिस ने तफ्तीश की है और तफ्तीश के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी अब सिया गोयल को लेकर, पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारी और पुलिस की गाड़ी, इसी गाड़ी में सिया गोयल है, आरोपी सिया गोयल को लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी अब निकल रही है। लगभग 25 मिनट की तहकीकात हुई है और ये गाड़ी निकल चुकी है। सिया गोयल यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मिनट पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है। काफी सारी इसमें ऐसे चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, उस समय क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या शूज थे, चेतन के भी केस में ही है। इस चीज को लेकर पुणे रूरल पुलिस बड़ी तफ्तीश कर रही थी। कम से कम 25 मिनट यहाँ पर पुणे रूरल पुलिस की गाड़ी सिया गोयल को लेकर आए थे। काफी तफ्तीश की है, रूरल पुलिस से आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इसको दिखाने के लिए आपका अपना न्यूज डॉट्स।
1: Right, my colleague there trying to get us a glimpse of Sia Goyal, and that is Sia Goyal who's now being taken to that hill where she had practiced. It was a practice round that took place on another hill which wasn't too far from her residence. First, she was taken to the residence by the Pune police. Do remember that they have custody of both these accused till tomorrow, the 3rd of July. The probe has intensified in the murder case of Ketan Agarwal, who was killed by his fiancé Sia and her boyfriend Chetan. Investigators have told NDTV that Sia allegedly took possession of Ketan's mobile phone after he fell from the cliff, and that she is now being probed for the possible deletion of data. If that allegation is backed by forensic evidence, it adds another layer of possible pre-planning to a crime that investigators already believe was carefully planned. NDTV has also accessed a Snapchat video of Sia and Chetan from the 27th of May, almost 3 weeks before Ketan was murdered.
2: आपके वकील कौन है? मतलब इस केस में सिया गोयल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है?
3: मेरे वकील जी अभी विपुल जी सर है, जिनको मैंने पूरा यानी कि सिया का केस दिया है, और आशुतोष श्रीवास्तव जी बड़ा नाम है उनका,
2: सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं।
3: हाँ जी उनका आज बड़ा नाम है उनका आज। तो मैंने कभी उनको कुछ हायर नहीं किया है और ना इस केस में उनको कुछ यानी कि काम करने का मैंने कुछ कहा है।
2: तो इस केस कौन देख रहा है फिर?
3: विपुल जी सर देख रहे हैं जी।
2: अच्छा, और भी मेरे कुछ सवाल है आपसे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है?
3: पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें जल्द से जल्द आरोपी का पता चले, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है।
2: और सिया आरोपी ऑलरेडी है, कल दोषी करार हो गई तो?
3: दोषी करार होती है तो वही सजा है जो केतन जी के साथ हुआ है, ये तो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है। और दोषी कोई भी हो, मेरी बेटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे।
2: सजा को मिलनी बेटी को अगर वो दोषी करार देती है तो वो सजा देने के हक में है?
3: पूरा हक में और इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम खत्म होना चाहिए।
1: Switching tracks to more news coming out of Maharashtra. We're talking about the monsoon chaos that's continuing to grip the financial capital, with heavy rain triggering widespread waterlogging across the city. And this is from King Circle and Kurla all the way to Dadar and also Navi Mumbai and Kharghar. All these areas and roads that have been submerged and, you know, completely flooded, waterlogged. We have, homes and that have also seen water entering some of those homes, massive traffic jams, heavy rain that's flooded homes in the Kamla Nagar area of Mumbai. Then we have Sion, where this area has also seen water entering residential buildings and disrupting daily life. Residents allege clogged drains and delayed desilting has worsened the flood situation in the financial capital that has to brave the monsoon every season. The season that continues for 4 long months. This time around, the only saving grace perhaps was that monsoon was delayed by 2 weeks. So we're seeing that, you know, loss of time that monsoon is now sort of making up for it. Now here we see waterlogging in Dadar's Hindu Colony that has left pedestrians wading through ankle deep water. So those are the visuals coming about after relentless rain continued to disrupt movement and daily life in the region. Heavy monsoon rain has left Mumbai's King Circle heavily waterlogged as well, submerging roads and slowing traffic to a crawl. Commuters are facing major delays as vehicles inch through flooded stretches. As you can see on your screen here,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Japanese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings.
1: Namaskar, good afternoon, Your Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media.
2: Your Excellency, aur mori choti behan, Pradhanmantri Takaichi ji, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साचा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल पुथल के आज के माहौल में

आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं, एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में ₹10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं।

0: that is being hosted by NDTV. Let's get you some of those moments from that India-Japan Strategic Dialogue Summit that's taking place here in the National Capital here. Here's a heartwarming moment that celebrates that connect between the two nations. Japanese influencer and content creator Murasaki has surprised everyone by not just speaking in Hindi, but sharing the very first Hindi words she learned, recalling the first Hindi film she watched, and revealing her favorite Hollywood star and dancing to the tunes of one. Listen in.
1: बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास मेहमान आए और इस तरीके से हमें एनर्जी दें, हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है. एंड व्हाई आई एम आल्सो स्विचिंग टू हिंदी इज दैट शी स्पीक्स एब्सोल्युटली लवली हिंदी. सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी मायो?
2: बहुत बहुत धन्यवाद इकट्ठे होने के लिए. मैं हूँ हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की. मैंने हिंदी में बीए किया है जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी में. और अच्छा थैंक यू और हाँ, और यूट्यूबर बन गई एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ. सो थैंक यू सो मच.
1: आपकी सीरीज मोशी मोशी मुंबई बहुत कमाल की है. अगर आप में से किसी ने चेक नहीं की तो यूट्यूब पर आप वो जरूर देख सकते हैं. नाउ यू नो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट ऑब्वियस,
2: ओके,
1: बट आई एम रियली क्यूरियस टू नो द आंसर. इज इंडिया योर होम नाउ?
2: यस.
1: इज इट होम?
2: यस.
1: एंड कैन यू ऑल्सो शेयर व्हाट मेड इट योर होम, एनी मोमेंट व्हेन यू रियलाइज ओके ये मेरा घर है?
2: सो अभी मैं मुंबई में रहती हूँ. एक साल पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गई एंड उससे पहले देर वॉज अ रीज़न दैट मेड मी होम इन मुंबई. सो देर इज़ वन पर्टिकुलर इंडियन फैमिली हु हैज़ बीन रिसीविंग मी एज अ होस्ट फैमिली. सो नाउ द होस्ट मदर ऑफ द हाउस इज एक्चुअली द कोरियोग्राफर ऑफ घूमर. सो शी इज़ वेरी कल्चरल पर्सन एंड वेरी नाइस एंड शी हैज़ बीन टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडियन कल्चर.
1: क्या पसंद करती हैं आप खाना हिंदुस्तानी खाने में?
2: आलू पराठा.
1: सुबह सुबह आपने क्या बोल दिया यार, सबके मुंह में पानी आ चुका है आलू का पराठा सुनने के बाद.
2: इट्स वेरी गुड.
0: And who doesn't love aloo paratha? And of course, lighting up the stage was this influencer from Japan, who in fact took to the stage and performed to the Oscar-winning hit Nato Nato. Let's listen in and watch those moves, as you can see on your screen right now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: Literally go from the man on the outside looking in, now to the man on the inside looking out.
11: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
10: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
11: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
10: What would the young man in India say if he could see you right now?
11: I'll be up there soon with you.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter

0: Dr. Anil Mishra, will be reached through voting. And remember, both these two personalities are connected with the people who have been arrested, eight people arrested in this case of donation theft. Now, a picture of the brother of the accused, Avinash Shukla, is going viral in this picture. Avinash's brother, Amit Shukla, is seen with a bundle of notes in his hands. There you can see that picture there. The police will question Avinash's brother as well over this picture. Meanwhile, the police have moved the court seeking 48-hour custody of Avinash Shukla for interrogation.
1: Gopal to aise kuch bhi nahi hai. Aur Ram ji jo nirnay denge wo bhi theek ho jayenge. Kyunki Gopal koi bhi kaam kare hamare tehsilo jo nirnay unko wahi kaam karna chahiye, wo apne man se unko koi kaam karne ka adhikar nahi hai.
2: To kyun itna vivadon mein unka naam aa raha hai, Gopal Rao ko lekar itne vivad hai guruji?
1: और गलती किए होंगे इसीलिए बोल रहे हैं और मीटिंग होगी तो उनसे बातचीत करके उनको भी समझा जाए, वो भी सही हो जाएगी।
2: क्या उनके आने के बाद से, क्योंकि शुरू से तो व्यवस्था में थे नहीं, व्यवस्था तो आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने व्यवस्था को सृजित किया, जब वो आए उसके बाद व्यवस्था में क्या अंतर आया?
1: चूँकि राम जी वहाँ विराजमान है, ये वैष्णव संप्रदाय का स्थान है, वैष्णव संप्रदाय को जो अगर मानोगे तो स्थान का विकास होगा, अगर उस परंपरा को नहीं मानोगे तो आसान का घर का विनाश होता, विकास नहीं होता। ये क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं, वो परंपरा मान नहीं रहे हैं, जानते, इसीलिए इसे धीरे धीरे हमारे पंच लोग, दस लोग मिलके सब सही कर लेंगे और विकास शुरू हो जाएगा।
3: देखिए, मेरा सीधा कहना है कि दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं, क्योंकि जिसका कोई दोष नहीं है वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं, ऐसे जिन्होंने, जिनका कोई इससे संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही है, यह सबको जांच के लिए ले जा रही है, तो स्वाभाविक लोग तो शक करेंगे ही, लेकिन है, मैं जानता हूं कि कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से काम करने आते थे।
4: रहने की बात है, वॉट दे हैव डन वी बिलीव दैट दे बिल्ट अयोध्या एंड लॉस्ट, देर वॉज नो 400 पार, नाउ दे आर रॉबिंग राम, दे पुट राम इन द बैलेट बॉक्स एंड रिड्यूस्ड हिज मर्यादा पुरुषोत्तम स्टेटस, नाउ दे आर रॉबिंग हिम ऑल्सो, दिस इज अ बंच ऑफ थीव्स, चोरों का बिरादरी, ऊपर से नीचे तक इनका सेटिंग फिटिंग इन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं। वॉट आर दे टॉकिंग नाउ, दे वॉन्ट एस आई थी इंक्वायरी, अरे बाबा, एनी चाइल्ड विल टेल यू हाउ मच थेफ्ट इज हैपनिंग।
5: वी आर वेरी कीन टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रॉबरी दैट हैज टेकन प्लेस राम जन्मभूमि, बिकॉज द मेन कैंपेन ऑफ हिंदुत्व फोर्सेस इन केरला इज द टेम्पल्स आर अनसेफ under government, unfortunately a corruption in the Sabarimala, and now comes the Ram Janmabhoomi, the temple, how it has been plundered by a group for so long and there is hardly anybody to question them. In Kerala the BJP will have to answer. The guys who are saying temples are not secure with the government now will have to answer about how secure are the temples in the hands of the Hindutva forces.
0: Right, so the opposition there raising questions about this Chanda Chori, but let's take you through the cast of characters now. And you have Avinash Shukla, the ex-trust employee, and he's been arrested by the police, and he confessed that the theft was worth crores. The key accused in the temple theft, he also revealed the theft modus operandi. He was questioned for nearly 2 hours, and that's where a lot of information emerged as to how this donation theft was taking place. Then you have Anil Mishra, the trust member named by the accused Avinash Shukla, and he said that Anil played a key role, that Anil Mishra played a key role and mentioned during police questioning. And then, of course, you have Tinu Yadav, who is Champat Rai's driver, Champat Rai, who was heading the Ram Mandir Trust. He's been named as the mastermind by accused Avinash. In fact, Champat Rai himself is also blaming him. He facilitated the donation theft. He hid money in the bathroom. He had a key to the counting room.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
8: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
9: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
10: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
7: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
11: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
12: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
11: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
12: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
11: What would the young man in India say if he could see you right now?
12: I'll be up there soon with you.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।
16: सबका राजा आर्योर मसाला।
17: All right, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
18: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ और पीछे देखने की कोशिश करूं तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पे लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि दो दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी है जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पे जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करो।
9: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
10: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
11: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
12: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
13: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
14: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
15: It's also important that how they are reshaping the industries.
16: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
11: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
17: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
18: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
17: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
18: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash in New Delhi.
17: What would the young man in India say if he could see you right now?
18: I'll be up there soon with you.
19: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
20: वाओ मामा क्या स्वाद है।
21: अरे मेरे राजा।
22: सबका राजा आर प्योर मसाला।
23: ऑलराइट, वी बिगिन द ब्रेकफास्ट शो विद अ बिग फोकस व्हिच इज महाराष्ट्र। द मॉनसून इज वंस अगेन टेस्टिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विद हैवी रेन डिस्टर्बिंग ट्रांसपोर्ट, फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज एंड रेजिंग फ्रेश सेफ्टी कंसर्न्स। In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
24: मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पे लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो इलाकों में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि दो दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी है जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पर जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार के अनेक लोगों ने दावा किया था कि मुंबई की अनेक सड़कों को हम कॉन्क्रीटीकरण करें, लेकिन फिलहाल ज़मीनी स्तर पर आप देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से खड्डे यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं उसको लेकर बस जब इसमें से मार्ग निकलने का प्रयास करी उस दौरान आप देख सकते हो कि आधा बस का टायर जो है वो इस खड्डे में जा रहा है।
0: It's pouring in Mumbai heavily since last night, and the IMD has declared orange alert for Mumbai today and up to Saturday. Right now, I am standing at Hindamata area, which is an hotspot area for waterlogging, and you can see waterlogging has started in this area. Also, people are making out their way through this water. The BMC had claimed that the Nali Safai has been done up to 100%, but you can see that the claims that were done by the BMC are totally failing because waterlogging has started in Mumbai. Due to this waterlogging, also traffic congestion will begin in some time because this is early morning and people are getting out of their houses right now to go to their offices. But
1: पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एआई, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
9: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
10: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
11: I think it's also important that how they are reshaping the industries. Commercial activities which they are into, and it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
8: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
12: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो।
13: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
14: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
15: Alright, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai.

0: Well, on the occasion of the visit of the Japanese Prime Minister, NDTV is, of course, organizing a day-long NDTV India-Japan Summit. And let me get you a heartwarming, in fact, moment from that celebration. I mean, this is what celebrates the cultural connect between India and Japan. Japanese influencer and content creator Mayo Murasaki was at the NDTV Summit. She surprised everyone by speaking in Hindi. And in this strategic dialogue that NDTV has organized, she shared the very first Hindi words she learned, recalling that the first Hindi film she watched, and also leaving us with a mesmerizing performance. Take a look.
1: बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास मेहमान आए और इस तरीके से हमें एनर्जी दें, हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है. एंड व्हाई आई एम आल्सो स्विचिंग टू हिंदी इज दैट शी स्पीक्स एब्सोल्युटली लवली हिंदी. सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी मायो?
2: बहुत बहुत धन्यवाद इकट्ठे होने के लिए. मैं हूँ हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की. मैंने हिंदी में बीए किया है जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी में. और अच्छा अरे थैंक यू. और हाँ, और यूट्यूबर बन गई एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ. सो थैंक यू सो मच.
1: आपकी सीरीज मोशी मोशी मुंबई बहुत कमाल की है. अगर आप में से किसी ने चेक नहीं की तो यूट्यूब पर आप वो जरूर देख सकते हैं. नाउ यू नो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट ऑब्वियस,
2: ओके,
1: बट आई एम रियली क्यूरियस टू नो द आंसर. इज इंडिया योर होम नाउ?
2: Yes.
1: Is it home?
2: Yes.
1: And now, can you also share what made it your home? Any moment when you realize, okay, ये मेरा घर है.
2: So, अभी मैं मुंबई में रहते हूँ. एक साल पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. एंड उससे पहले there was a reason that made me home in Mumbai. So there is one particular Indian family who has been receiving me as a host family. So now the host mother of the house is actually the choreographer of Gumar. So she's very cultural person and very nice. And she has been teaching me so many things about Indian culture.
1: So what do you like to eat in Hindustani food?
2: Aloo paratha.
1: सुबह सुबह आपने क्या बोल दिया यार, सबके सबके मुंह में पानी आ चुका है आलू का पराठा सुनने के बाद.
2: इट्स रियली गुड.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
13: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग द कंपनी ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन बैंकर्स। यू नो इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
14: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
15: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
16: It's also important that how they are reshaping the industries.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
12: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
18: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
19: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करो।
20: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
21: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई 12:30 और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई 12:30 सिर्फ NDTV 24/7 पर।
12: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
13: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
14: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
15: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
16: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
17: For us the biggest thing is trust, that's what we provide.
18: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
12: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
22: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
9: 1933। सरसों से सरसों।
10: ऑलराइट, वी बिगिन द ब्रेकफास्ट शो विद अ बिग फोकस व्हिच इज महाराष्ट्र। द मॉनसून इज वंस अगेन टेस्टिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विद हैवी रेन डिस्टर्बिंग ट्रांसपोर्ट, फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज एंड रेजिंग फ्रेश सेफ्टी कंसर्न्स। In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw. As you can see,
23: welcome back. Do you know how many zeros are there when I say 12,000 crore? Let's count it together, ladies and gentlemen. 12,000 crore, because that's an important figure that you need to remember. So if I say 12,000 crore rupees, and I'll tell you the number of zeros, let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 and 11 zeros is, in fact, the cost of construction of a highway, a super highway, which has been made to reduce the distance between Delhi and Dehradun. 12,000 crore rupees have been spent on this highway. And we should hail the construction quality of this highway because it could not even withstand the first monsoon. This section of the Delhi-Dehradun expressway near Shamli caved in. And let's play out those visuals now of what the video which has gone viral following just one heavy overnight rainfall, raising serious concerns about the durability of the recently inaugurated highway. Now, videos of the damaged stretch quickly circulated, went viral, showing the depression on the road, and it could have, in fact, created a massive safety issue. Thank God, in a country like ours, where you've seen people dying on potholes and manholes and open manholes and trees falling, nobody, in fact, died as far as those highways are concerned. Let's just play out those visuals of the which have gone viral of those of that depression, please. And the incident occurred near a village in Shamli district. The problem came to light after motorists shares visuals where a portion of this road was caved in. Now, the Delhi-Dehradun expressway, spanning over 200 kilometers, was inaugurated on April 14 this year itself. Just this year, in 2026, in April, and today we are standing in July. Built at an estimated cost of 12,000 crore rupees, 12 and 11 zeros, remember that. The Delhi-Dehradun Expressway is a major infrastructural project. It was supposed to reduce time, but look at the construction quality. NHA has also come out with their clarification on this, but first listen in to what my colleagues found out on the spot.
0: यहाँ पर एनडीटीवी की टीम जो पहुंची है आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये तारकोल है ये बन रहा है और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे पास इंची टेप है आप देख सकते हैं इससे मैं नापूंगा कि कितना बड़ा जो गड्ढा है वो लगभग हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आइए मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो इंची टेप से जो नाप रहे हैं ये लगभग यहाँ से 53 इंच जो है वो यहाँ पर गड्ढा हुआ था जो कि अब इसको NHAI द्वारा ठीक किया जा रहा है और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली से देहरादून लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर दूरी तय की जाती है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो गाड़ियों की जो स्पीड थी यहाँ पर जो है ये रोड़ी जो है ये बाहर निकली हुई है और मैं इंची टेप से दोबारा जो दूसरा गड्ढा था वो आपको नाप कर दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन को कहूँगा कि इंची टेप दिखाए कितने सेंटीमीटर का ये गड्ढा है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से और ये देखिए आप ये लगभग इंची टेप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जरा पास आइए मैं कहूँगा कैमरामैन को कि ये इंची टेप दिखाए कि कितना ये यहाँ से बड़ा गड्ढा जो था ये हुआ है ये देखिए 60 सेंटीमीटर ये यहाँ पर है ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पर है जो इंची टेप से हमने नापाया गड्ढा और यहाँ से हम आगे नापेंगे कि कितना बड़ा गड्ढा ये और हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नापूंगा कि यहाँ से लेकर के और ये गड्ढा जो है इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लगभग 100 सेंटीमीटर का ये गड्ढा था जो कि यहाँ पर हुआ था जिसके बाद वीडियो वायरल हुई और NHAI वाले हरकत में आए हरकत में आने के बाद ये आप देख सकते हैं ये काम शुरू हो गया है
23: Now NHAI is doing the patchwork there and now they are saying it happened because of water stagnation and we are now once again making arrangements for the water to be in fact taken out of that. A new drain will be built. What were you doing when this whole thing of 12,000 crore was built? This is an ode to the construction quality of things that happen in India. That's all the time that I have at this edition. I'll be back tomorrow, same place, same time. Thank you so much. Stay safe.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
10: We are over, जिमी।
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स chose India Inc.'s best and brightest.
13: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
14: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
15: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
16: It's also important that how they are reshaping the industries.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
12: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
18: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
19: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो,
20: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
21: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
12: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज India Inc.'s best and brightest.
13: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
22: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
23: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
24: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
25: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
26: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
12: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
18: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
27: ऑलराइट, वी बिगिन द ब्रेकफास्ट शो विद अ बिग फोकस व्हिच इज महाराष्ट्र। द मॉनसून इज वंस अगेन टेस्टिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing and authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
0: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है. फिलहाल में मुंबई के

0: कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ। पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पे लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हुई उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि दो दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी है जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पर जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार के अनेक लोगों ने दावा किया था कि मुंबई की अनेक सड़कों को हम कॉन्क्रीटीकरण करें, लेकिन फिलहाल ज़मीनी स्तर पर आप देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से खड्डे यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं उसको लेकर बस जब इसमें से मार्ग निकलने का प्रयास करी उस दौरान आप देख सकते हो कि आधा बस का टायर जो है वो इस खड्डे में जा रहा है।
1: It's pouring in Mumbai heavily since last night, and the IMD has declared orange alert for Mumbai today and up to Saturday. Right now, I am standing at Hindamata area, which is an hotspot area for waterlogging, and you can see waterlogging has started in this area. Also, people are making out their way through this water. The BMC had claimed that the Nali Safai has been done up to 100%, but you can see that the claims that were done by the BMC are totally failing because waterlogging has started in Mumbai. Due to this waterlogging, also traffic congestion will begin in some time because this is early morning and people are getting out of their houses right now to go to their offices. But definitely, due to this waterlogging and traffic congestion, how Mumbaikars will make way till their office is a big question mark in front of them. The railway lines have also been disrupted because the Western Railway is running 10 to 15 minutes late and the Central Railway is running 5 to 7 minutes late.
2: My colleague Abhishek Awasthi has been tracking the latest details for us. He joins us live this morning from Mumbai. Abhishek, to begin with, which parts of Mumbai, Navi Mumbai and Pune remain the worst affected this morning?
3: Definitely, you know, as per the latest update from the weather forecast.
4: Summer mein balti to chahiye for your pasina.
5: Balti.
4: Aur monsoon mein balti to chahiye for chhat ka pasina. पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
6: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
5: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
3: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू
9: एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क, the mustard specialist since
14: 1933. सरसों
9: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
15: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो।
16: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इनपुट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
17: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई 2:30 और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई 12:30 सिर्फ NDTV 24/7 पर।
18: समर में बाल्टी तो चाहिए।
19: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: Thanks for giving us such... I tried. Please have a seat. Guys, we want another round of applause. I mean, this was a great start for us. And बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास मेहमान आए और इस तरीके से हमें एनर्जी दें, हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है. एंड व्हाई आई एम आल्सो स्विचिंग टू हिंदी इज दैट शी स्पीक्स एब्सोल्युटली लवली हिंदी. सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी मायो?
1: बहुत बहुत धन्यवाद इकट्ठे होने के लिए. मैं हूँ हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की. मैंने हिंदी में बीए किया है जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी में. और अच्छा थैंक यू. और हाँ, और यूट्यूबर बन गई एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ. सो थैंक यू सो मच.
0: आपकी सीरीज मोशी मोशी मुंबई बहुत कमाल की है. अगर आप में से किसी ने चेक नहीं की तो यूट्यूब पर आप वो जरूर देख सकते हैं. नाउ यू नो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट ऑब्वियस,
1: ओके,
0: बट आई एम रियली क्यूरियस टू नो द आंसर. इज इंडिया योर होम नाउ?
1: यस.
0: इज इट होम?
1: यस.
0: एंड कैन यू आल्सो शेयर व्हाट मेड इट योर होम? एनी मोमेंट व्हेन यू रियलाइज ओके ये मेरा घर है?
1: सो अभी मैं मुंबई में रहते हूँ. एक साल पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. एंड उससे पहले देर वॉज अ रीज़न दैट द मेड मी होम इन मुंबई. सो देर इज़ वन पर्टिकुलर इंडियन फैमिली हु हैज़ बीन रिसीविंग मी एज अ होस्ट फैमिली. सो नाउ द होस्ट मदर ऑफ द हाउस इज एक्चुअली द कोरियोग्राफर ऑफ घूमर. सो शी इज़ वेरी कल्चरल पर्सन एंड वेरी नाइस. एंड शी हैज़ बीन टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडियन कल्चर. एंड इट हैड बीन लाइक 2-3 years दैट आई वॉज गोइंग देयर कॉन्स्टेंटली. एंड आई फील लाइक ओह नाउ मुंबई फील्स लाइक अ होम फॉर मी. एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई लास्ट ईयर.
0: While both these countries, India and Japan, you know, share a lot of commonalities, but there are also a few cultural differences. So what was the biggest cultural shock you received when you first came to India?
1: I think people are way more friendly than Japanese people. It's not like Japanese people are not friendly, but it takes a lot of time to get to know each other. First, we are like super polite and then keep distance and they just bow, you know. It's not, I'm not lying. I think bowing is the first thing. But in India, you can become friends very quickly. You ask, you know, a bunch of questions and you quickly, you know, घर आ जाओ हमारा खाना खाओ. एंड दैट हैज बीन लाइक देयर आर सो मेनी इनवाइट्स फॉर होम कुक्ड फूड व्हिच आई लव एब्सोल्युटली.
0: सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं आप खाना हिंदुस्तानी खाने में?
1: आलू पराठा.
0: सुबह सुबह आपने क्या बोल दिया यार, सबके मुंह में पानी आ चुका है आलू का पराठा सुनने के बाद.
1: इट्स रियली गुड.
0: ऑफ कोर्स उसके आगे हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है आलू के पराठे के आगे. बट देन यू आल्सो एक्सप्लेन यू नो जापान टू इंडियंस एंड देन यू आल्सो इंट्रोड्यूस इंडियन कल्चर टू जापानीज. व्हिच जॉब इज हार्डर?
1: Oh, introducing Japanese culture to Indian people and
0: versus Indian culture to Japanese.
1: Both are very difficult job, but I feel like introducing Indian culture to Japanese people is way harder because I feel like in Japanese people do not have a lot of correct image towards India. India is so diverse. It's
0: right.
1: Like there is like Delhi is a center, but the Nagaland is, for example, very different. It's totally different vibe, and explaining, like, it's not yet well known about those diversity of India, and it's not easy to explain this to Japanese people. So this is very challenging job, but I love it.
0: Yeah, since you mentioned Delhi, I mean, I think within Delhi, there is different, there are so many different cultures. It's a melting pot in itself.
1: Yes.
0: And taking cue from what you said, what are some of the common misconceptions that Japanese people usually have about Indians or Indian culture?
1: Yeah, as I said, I think India is too diverse, which is not known. Like, let's say food. We know naan and curry. So what is curry, right? Like, as you know, what is curry? It's the masala gravy for Japanese people. But what they don't know is there's so many types of Indian cuisine with multiple, you know, so many different variety of masala. So those things are very, still yet discovered.
0: So if you had to give a starter kit to somebody from Japan visiting India, what would be your top three tips for them to keep in mind when they are visiting our country?
1: Visit multiple places and eat multiple cuisines from street, say, lekar, like अच्छा अच्छा होटल पे क्योंकि अलग है लाइक देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स सो दैट्स टू सेकंड थिंग द थर्ड थिंग इज लोकल से मिलो लाइक अगर साइट सीइंग स्पॉट में जाएंगे तो देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर टू मीट फॉरेनर्स व्हिच इज वेरी डिफरेंट वाइब अगर कोई अच्छा असली दोस्त मिले एंड देन इफ यू विजिट समवन एल्सेस हाउस फॉर एग्जांपल एंड यू नो ईट home cooked food it's a totally different attitude of baba so I think that those are the three did I mention three team bola maine
0: yes
1: ha hai na ha those are the three tips
0: aapne badhiya tarike se send bhi use kiya atithi devo bhava mere to sawal chal hi rahe hain lekin aap logo ko remind kar do that we'll take questions from the audience as well so keep your questions prepared I'll open the floor very soon for questions from the audience now you know If you have to understand a country, of course, you understand it through their food, mm-hmm. but also through their language. What were yes. the first few words that you learned before you pursued your BA in Hindi?
1: Hindi. I think I only knew Namaste and maybe Swadesh or Swaraj from history books.
0: Right.
1: Like when I was learning world history, those are the words.
0: What was your gateway to Indian culture? What attracted you to this culture?
1: So my father used to be a Himalayan mountaineer and he used to come to India very often and bachpan mein aise kuch souvenirs liya tha ki like I don't even know what this is but like India ka hai aise karke so those are my childhood memory and then when I was thinking what to learn in college mein kuch to subject चुनना पड़ता है देन आई माई फादर रिकमेंडेड मी टू स्टडी हिंदी बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर इंटरेस्टिंग लैंग्वेज इंटरेस्टिंग कंट्री एंड पढ़ने के बाद बहुत मतलब मजा आएगा ऐसे सो आई डिड नॉट ऑनेस्टली आई डिड नॉट नो मच अबाउट इंडियन कल्चर बिफोर लाइक डिसाइडिंग टू स्टडी हिंदी बट मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया है हिंदी
0: बहुत अच्छा काम किया जोरदार तालियां एक बार बायो के लिए वही खाने और भाषा के अलावा अगर आप किसी भी कंट्री को किसी भी देश को समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है मूवीज सिनेमा एक अलग मीडियम है जिससे आप वो नॉलेज ले सकते हैं डू यू रिमेंबर द फर्स्ट हिंदी फिल्म यू वॉच्ड
1: आई थिंक दैट वाज रवान दैट वाज द टाइम दैट आई वाज स्टडीइंग हिंदी इन अ यूनिवर्सिटी एंड मेरे जो सीनियर हैड दिस यू नो मूवी watching home party and I joined then I watched Ravan and I think that after that I watched Om Shanti Om and yeah but in Japan the funny thing is they're more like since I was a Hindi student I watched Ravan and Om Shanti Om but the majority of Japanese people get to know about Indian film through South Indian cinema like RRR ka Natu Natu humne abhi kiya hai
0: right.
1: but RRR was a big hit and usse pehle Bahubali was a big hit and usse bahut pehle Muthu

0: तो खाना ही पड़ेगा. दैट्स लाइक नो नो रीजन, जस्ट माई वॉइस सेइंग दैट खाओ.
1: और फिर सब भूल जाओ. मैम, कैन वी हैव योर क्वेश्चन प्लीज? कैन वी गेट हर अ माइक प्लीज?
0: यस
1: मैम, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट ही कैन रीच यू.
2: नमस्ते मैम.
0: नमस्ते.
2: माय नेम इज खुशबू नितिन जैन. आई एम फ्रॉम शक्तिनगर दिल्ली. एज यू नो हिंदी लैंग्वेज, सो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन हिंदी.
0: अच्छा.
2: बिकॉज इट्स नाइस टू सी यू स्पीकिंग हिंदी. एंड माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फैमिली वैल्यूज. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जापान में अक्सर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं.
0: यस.
2: और भारत में जॉइंट फैमिली की परंपरा है.
0: यस.
2: तो आप भारतीय जो पारिवारिक संबंध हैं उनको किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई लड़की जापान में किसी से वेडिंग पर्पज से, आई मीन शादी करना चाहती है, जैसे इंडिया में होता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो क्या आप ईजीली उसको एज अ बहू, एज अ डॉटर इन लॉ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं?
1: That's an interesting question. That's the levels that you have to cross for a shadi in Japan, because there are many here in India. So
0: I think it's very different, and I'm not gonna lie, it's going to be very challenging. I actually have the there is a Japanese YouTuber who married an Indian boy. And she has been vlogging, and the name of the channel is I forgot. But
2: मैं चाहूँगी कि आप हिंदी में बोलें.
0: अच्छा अच्छा, हिंदी में बोल गए. हाँ,
1: इनके दो सवाल थे. पहला सवाल ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज वर्सेस यहाँ तक फैमिली कल्चर, एंड सेकंड शादी के लिए किस तरीके के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है.
0: तो आई थिंक ओके, पहले फर्क के बारे में बताऊंगी कि आई थिंक एज यू सेड, जापान में घर न्यूक्लियर फैमिली होता है, एंड वो खाली न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं, पर फैमिली मेंबर के अंदर में बहुत इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट है. कि जैसे कि अगर कोई भी चीज़ करने के लिए वो 20 साल के बाद मम्मी पापा का परमिशन मांगते नहीं है. लाइक वो मम्मी पापा भी, मुझे भी ऐसा सिखाया गया था कि खुद सोचो, खुद करो, मुझे मत पूछो, ऐसा मेंटलिटी ज़्यादा है. तो थोड़ा ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है. और पर उसकी वजह से इट्स अ प्रोज एंड कॉन्स कि अगर ऐसे हैं और ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे तो थोड़ा आइसोलेशन भी होएगा ना. तो जैसे कि बच्चे, जापान के जो ज़्यादा बच्चे हैं वो मम्मी पापा अगर दूर रहते हैं तो इतना बात नहीं करते हैं.
1: डबल एज स्वॉर्ड.
0: हाँ. और इंडिया में आपको, आप लोगों को तो पता है कि बहुत मिलजुल के रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, और सहायता ओपिनियंस भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. तो आई थिंक उसकी वजह से हमेशा मिलजुल के रहते हैं, विच आई फील रियली गुड. मुझे भी इंडिया आके ये सीखा है कि थोड़ा मम्मी से बात करनी ही चाहिए. तो बात ज़्यादा करना शुरू किया है. तो आई थिंक वो फ़र्क तो है. तो अब अगर कोई भी जापानी लड़की इंडिया आएंगे, या कोई भी जापानी लड़का इंडिया आएंगे और शादी करेंगे, तो वो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा है. खाना भी बहुत अलग है, और घर के अंदर में जो नियम हैं वो अलग अलग हैं. तो बहुत चैलेंजिंग होगा, पर अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कोई चिंता नहीं है ना. तो आई थिंक फैमिली अच्छा है तो सब अच्छा है.
1: फैमिली और प्यार, दैट्स ऑल वी नीड. गिव इट अप फॉर मायो. बट बिफोर वी लेट यू गो, ऑफ कोर्स वी विल हैव टू डू नाटू नाटू वन मोर टाइम.
0: ओके.
1: बिकॉज़ वी हैड सच अ ग्रेट स्टार्ट, एंड नाउ वी वांट टू रैप इट आल्सो विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी.
0: ओके.
1: सो कैन वी हैव द ट्रैक अगेन एंड हैव हर डांस ऑन नाटू नाटू वंस अगेन.
0: ओके.
1: गिव इट अप फॉर मायो गाइस.
0: दूसरा सेक्शन कर सकते हैं क्या?

0: 8 days since the Pune police began investigating the death of 26-year-old realtor Ketan Agarwal. And despite multiple arrests, crime scene recreations and digital seizures, the biggest questions remain unanswered. What exactly happened to Ketan's mobile phone after his death? Was any crucial evidence destroyed? Did anyone attempt to wipe digital traces before handing the phone back to Ketan's family? And perhaps the biggest question, did the statements of the two accused tell the same story, or are investigators looking at contradictions? Police have formally initiated the legal process to conduct a polygraph test on both the accused. The main accused, Sia Goyal, has now given her consent for the examination. Investigators are now expected to seek further police custody from the court to conduct the test. The objective is to verify inconsistencies, verify timelines, and confront the accused with contradictions emerging from forensic and digital evidence. And if everything happened exactly the way the accused have described, the next few days and the outcome of the polygraph process could prove crucial in helping investigators separate fact from fiction. In Pune, Saurabh Gupta, NDTV.
1: Shifting our focus to Ram Mandir now, where a new twist has come in the Ram Mandir donation theft probe. As per sources, Champat Rai, who has resigned from the trust, has told his close aides that Tinu Yadav is the main character in the donation theft case. He also said that Tinu has taken advantage of his post in trust and has committed all frauds. As per sources, Ram Mandir Trust will hold its upcoming meeting on July 6, a final decision regarding the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra will be reached through voting. But as per sources, Champat Rai has said that he does not want to continue amid this theft charge. A picture of brother of accused Avinash Shukla is also going viral. In this picture, Avinash's brother Amit Shukla is seen with a bundle of notes in his hands. Police will now question Avinash's brother over this picture. Meanwhile, the police have moved the court seeking 48-hour custody of Avinash Shukla for interrogation.
2: गोपाल तो ऐसे कुछ भी नहीं है और राम जी जो निर्णय लेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि गोपाल कोई भी काम करे हमारे ट्रस्टी लोग जो निर्णय उनको वही काम करना चाहिए और अपने मन से उनको कोई काम करने का अधिकार नहीं है
3: तो क्यों इतना विवादों में उनका नाम आ रहा है गोपाल राव को लेकर इतने विवाद है गुरु जी
2: और गलती किए होंगे इसीलिए बोल रहे हैं और मीटिंग होगी तो उनसे बातचीत करके उनको भी समझा जाए वो भी सही हो जाएगी
3: क्या उनके आने के बाद से क्योंकि शुरू से तो व्यवस्था में थे नहीं व्यवस्था तो आप लोगों ने बनाई आप लोगों ने व्यवस्था को सृजित किया जब वो आए उसके बाद व्यवस्था में क्या अंतर आया
2: क्योंकि राम जी वहाँ विराजमान हैं ये वैष्णव संप्रदाय का स्थान है वैष्णव संप्रदाय को जो अगर मानोगे तो स्थान का विकास होगा अगर उस परम्परा को नहीं मानोगे तो स्थान का घर का विनाश होता विकास नहीं होता ये क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं वो परंपरा मान नहीं रहे हैं जानते इसीलिए इसे धीरे धीरे हमारे पंच लोग दस लोग मिलकर सब सही कर लेंगे और विकास शुरू हो जाएगा
4: देखिए मेरा सीधा कहना है कि दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं क्योंकि जिसका कोई दोष नहीं है वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिन्होंने जिनका कोई से संबंध नहीं था लेकिन SIT ये सबको उठा ले रही यह सबको जांच के लिए ले जा रही है तो स्वाभाविक लोग तो शक करेंगे ही लेकिन है मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से काम करने आते थे
5: कहने की बात है What they have done, we believe that. They built Ayodhya and lost. There was no char so far. Now they are robbing Ram. They put Ram in the ballot box and reduced his Maryada Purushottam status. Now they are robbing him also. This is a bunch of thieves, choro ka biradari. Upar se niche tak inka setting fitting inhi ke log andar baithe.

0: And perhaps the biggest question, did the statements of the two accused tell the same story, or are investigators looking at contradictions? Police have formally initiated the legal process to conduct a polygraph test on both the accused. The main accused, Sia Goyal, has now given her consent for the examination. Investigators are now expected to seek further police custody from the court to conduct the test. The objective is to verify inconsistencies, verify timelines, and confront the accused with contradictions emerging from forensic and digital evidence. And if everything happened exactly the way the accused have described, the next few days and the outcome of the polygraph process could prove crucial in helping investigators separate fact from fiction. In Pune, Saurabh Gupta, NDTV.
1: Shifting our focus to Ram Mandir now, where a new twist has come in the Ram Mandir donation theft probe. As per sources, Champat Rai, who has resigned from the trust, has told his close aides that Tinu Yadav is the main character in the donation theft case. He also said that Tinu has taken advantage of his post in trust and has committed all frauds. As per sources, Ram Mandir Trust will hold its upcoming meeting on July 6, a final decision regarding the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra will be reached through voting. But as per sources, Champat Rai has said that he does not want to continue amid this theft charge. A picture of brother of accused Avinash Shukla is also going viral. In this picture, Avinash's brother Amit Shukla is seen with a bundle of notes in his hands. Police will now question Avinash's brother over this picture. Meanwhile, the police have moved the court seeking 48-hour custody of Avinash Shukla for interrogation.
2: गोपाल तो ऐसे कुछ भी नहीं है और राम जी जो निर्णय लेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि गोपाल कोई भी काम करे हमारे तहसील जो निर्णय उनको वही काम करना चाहिए वो अपने मन से उनको कोई काम करने का अधिकार नहीं है
3: तो क्यों इतना विवादों में उनका नाम आ रहा है गोपाल राव को लेकर इतने विवाद है गुरु जी
2: और गलती किए होंगे इसीलिए बोल रहे हैं और मीटिंग होगी तो उनसे बातचीत करके उनको भी समझा दे वो भी सही हो जाएगी
3: क्या उनके आने के बाद से क्योंकि शुरू से तो व्यवस्था में थे नहीं व्यवस्था तो आप लोगों ने बनाई आप लोगों ने व्यवस्था को सृजित किया जब वो आए उसके बाद व्यवस्था में क्या अंतर आया
2: क्योंकि राम जी वहाँ विराजमान है ये वैष्णव संप्रदाय का स्थान है वैष्णव संप्रदाय को जो अगर मानोगे तो स्थान का विकास होगा अगर उस परम्परा को नहीं मानोगे तो स्थान का घर का विनाश होता विकास नहीं होता ये क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं वो परंपरा मान नहीं रहे हैं जानते इसीलिए इसे धीरे धीरे हमारे पंच लोग दस लोग मिलकर सब सही कर लेंगे और विकास शुरू हो जाएगा
4: देखिए मेरा सीधा कहना है कि दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं क्योंकि जिसका कोई दोष नहीं है वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिन्होंने जिनका कोई इससे संबंध नहीं था लेकिन एसआईटी ये सबको उठा ले रही है यह सबको जांच के लिए ले जा रही है तो स्वाभाविक लोग तो शक करेंगे ही लेकिन है मैं जानता हूं कि कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से काम करने आते थे
5: कहने की बात है What they have done, we believe that. They built Ayodhya and lost. There was no char so far. Now they are robbing Ram. They put Ram in the ballot box and reduced his Maryada Purushottam status. Now they are robbing him also. This is a bunch of thieves, choro ka biradari. Upar se niche tak inka setting fitting inhi ke log andar baithe. And what are they talking? Now they want to SIT inquiry. Arre Baba, any child will tell you how much theft is happening.
6: We are very keen to understand the kind of robbery that has taken place Ram Janmabhoomi is. Because the main campaign of Hindutva forces in Kerala is that temples are unsafe under government. Unfortunately, a corruption in the Sabarimala. And now comes